0: कर्म दृढ़ निश्चय से युक्त साधनाएं करते हुए निराकार उपासना में प्रवेश करना चाहिए। स्वामी ने अत्यंत सरल उदाहरणों के माध्यम से सिद्ध किया कि सगुणोपासना का महत्व निर्गुणोपासना में तल्लीन होने का उत्तम साधन है।
1: अभी आपने भगवान बाबा द्वारा श्रीमद् भगवद गीता पर दिनांक 4 अगस्त 1984 को दिया गया प्रवचन सुना।
2: यू आर ट्यून्ड टू रेडियो साई ग्लोबल हार्मनी bringing you 24 hours a day the message of love of Bhagwan Sri Satya Sai Baba.

अब आगत है ना आखिया न जे पर कर भोजन करे न उदरे कारण अपने बहले पे करे न अभ्यागत से ही नानका जे आत्म गौण करे न पाल लहन सौ अपना निज कर रहन करे न पौड़ी अंबर तरत विछोड़िया न विच सच्चा असराओ कर दर सबो सच है जिस विच सच्चा नाओ सब सच्चा हुक्म वरतदा गुरमुख सच समाओ सच्चा आप तख्त सच्चा बह सच्चा करे न्याओ सब सचो सच वरतदा गुरमुख लख लखाई वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। श्लोक महल

नाम जपे नाम मुवारा दे तिस जन को करो सब नमस्कार। मलकूड़ी नाम उतारियन जप नाम होआ सचियार। जन नानक जिस दे एह चलत है सो जीवो देवनहार। पौड़ी तुद जेवण दाता नाहे किस आग सुनाई है गुर प्रसादी पाए जिथों हम मैं जाई है। रस कस साधा बाहरा सच्ची वड़ियाई है जिसनों बख्शे तिस दे आप लै मिलाई है। घट अंतर अमृत रखियोन गुरमुख किसै प्याई वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। सलोक महला तीजा बाबाणियां कहानियां पुत सपुत करेन जे सतगुर भावै सो मन लैन सेई कर्म करेन। जाए पुछो सिमरत शास्त्र ब्यास सुख नारद बचन सब सृष्ट करेन सच्चै लाए सच लगे सदा सच सामालेन। नानक आए से प्रवान पए जे सगले कुल तारेन। महला तीजा गुरु जिन्ना का अंदला सिख भी अंधे कर्म करेन ओए भाणे चलन अपने नित झूठो झूठ बोलेन। कूड़ कुसत कमावदे पर निंदा सदा करेन ओए आप डुबे पर निंदका सगले कुल डोबेन। नानक जित ओए लाए तित लगे ओए बपड़े क्या करेन। पौड़ी सब नदरी अंदर रखदा जेती सिहट सब कीती एक कूड़ को सत लायन मनमुख वेगूती। गुरमुख सदा तिहाई है अंदर हर प्रीति जिनको पोतै पुन है तिन वात सपीती। नानक नाम तिहाई है सच सिफत सुनाई वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। सलोक महला पहला सती पाप कर सत कमाहे गुर दीख्या कर देवन जाहे स्त्री पुरखे खटे पाओ पावे आवो पावे जाओ। शास्त्र वेदना माने कोए आपो आपे पूजा होए काजी होए कै बह न्याए फेरे तस्बी करे खुदाए। वड्डी लैके हक गवाए जे को पुछै ता पढ़ सुनाए तुरक मंत्र कन हृदय समाहे लोक मुहावै चाड़ी खाहे चौका देके सुचा होए ऐसा हिंदू वेखो कोए। जोगी गिरही जटा बिभूत आगै पाछै रोवै पूत जोग न पाया जुत गवाई कित कारण सरशाई पाई। नानक कल का एहो प्रवान आपे आखण आपे जान। महला पहला हिंदू कह कर हिंदू आवै सूत जनेऊ पड़ गल पावै सूत पाए करे बुरियाई नाता तोता थाए न पाई। मुसलमान करे वड्याई विण गुर पीरै को थाए न पाई। राहो दसाए उथै को जाए करनी बाजाओ पिस्त ना पाए। जोगी कह कर जुगत दसाई तित कारण कर मुंद्रा पाई। मुंद्रा पाए फिर संसार जिथै किथै सृजनहार जेते जीते ते वाटाऊ चीरी आई ढिल ना काऊ। एथे जाने सो जाए सियाने होर फकड़ हिंदू मुसलमान है। सबना का दर लेखा होए करनी बाजो तरह ना कोए सचो सच वखाण कोए नानक अगै पुछ ना होए। पौड़ी हर का मंदिर आखिया काया कोटगढ़ अंदर लाल जवेहरी गुरमुख हर नाम पढ़। हर का मंदर शरीर अत सोहना हर हर नाम दिड़ मन मुखे आप खुआयन माया मोह नित कड़। सबना साहब एक है पूरे भाग पाया जाई वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई।
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਨਾ ਸਤ ਦੁਖੀਆ ਨਾ ਸਤ ਸੁਖੀਆ, ਨਾ ਸਤ ਪਾਣੀ ਜੰਤ ਫਿਰੈ, ਨਾ ਸਤ ਮੁੰਡ ਮੁੰਡਾਈ ਕੇਸੀ, ਨਾ ਸਤ ਪੜਿਆ ਦੇਸ ਫਿਰੈ, ਨਾ ਸਤ ਰੁਖੀ ਬਿਰਖੀ ਪੱਥਰ, ਆਪਤ ਛਾਵੈ ਦੁਖ ਸਹੈ, ਨਾ ਸਤ ਹਸਤੀ ਬੱਧੇ ਸੰਗਲ, ਨਾ ਸਤ ਗਾਈ ਘਾਉ ਚਰੈ, ਜਿਸ ਹੱਥ ਸਿੱਧ ਦੇਵੈ ਜੇ ਸੋਈ, ਜਿਸਨੂੰ ਦੇ ਤਸਿਆਏ ਮਿਲੈ, ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕੋ ਮਿਲੈ ਵਡਾਈ, ਜਿਸ ਘਟ ਪੀਤਰ ਸ਼ਬਦ ਰਵੈ, ਸਭ ਘਟ ਮੇਰੇ ਹਉ ਸਭਨਾ ਅੰਦਰ, ਜਿਸੈ ਖੁਆਈ ਤਿਸ ਕੌਣ ਕਹੈ, ਜਿਸੈ ਦਿਖਾਲਾ ਵਾਟੜੀ ਤਿਸੈ ਭੁਲਾਵੈ ਕੌਣ, ਜਿਸੈ ਭੁਲਾਈ ਪੰਧ ਸਿਰ ਤਿਸੈ ਦਿਖਾਵੈ ਕੌਣ, ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੋ ਗ੍ਰਹਿ ਜੋ ਨਿਗਰਹ ਕਰੈ, ਜਬ ਤਬ ਸੰਜਮ ਪੀਖਿਆ ਕਰੈ, ਪੁਨ ਦਾਨ ਕਾ ਕਰੇ ਸਰੀਰ, ਸੋ ਗ੍ਰਹਿ ਗੰਗਾ ਕਾ ਨੀਰ, ਬੋਲੈ ਈਸ਼ਰ ਸਤ ਸਰੂਪ, ਪਰਮ ਤੰਤ ਮੈਂ ਰੇਖ ਨਾ ਰੂਪ, ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੋ ਅਵਦੂਤੀ ਜੋ ਧੂਪੈ ਆਪ, ਭਿਖਿਆ ਭੋਜਨ ਕਰੈ ਸੰਤਾਪ, ਆਉ ਹੱਠ ਪਟਣ ਮੈਂ ਪੀਖਿਆ ਕਰੈ, ਸੋ ਅਵਦੂਤੀ ਸਿਵਪੁਰ ਚੜੈ, ਬੋਲੈ ਗੋਰਖ ਸਤ ਸਰੂਪ, ਪਰਮ ਤੰਤ ਮੈਂ ਰੇਖ ਨਾ ਰੂਪ, ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੋ ਉਦਾਸੀ ਜੇ ਪਾਲੇ ਉਦਾਸ, ਅਰਧ ਉਰਧ ਕਰੇ ਨਿਰੰਜਨ ਵਾਸ, ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਕੀ

बोलै चरपट सत स्वरूप परम तंत मै रेख न रूप महला पहला सो बैरागी जे उल्टे ब्रह्म गगन मंडल मै रूपै थम अहन से अंतर रह ध्यान ते बैरागी सत समान बोलै परथर सत स्वरूप परम तंत मै रेख न रूप महला पहला क्यों मरे मंदा क्यों जीवे जुगत कन पड़ाए क्या खाजै भुगत आस्त नास्त एको नाओ कौन सो अखर जित रह आओ धूप छाप जे

निरंकार जो रहे समाए, काहे पीखिया मंगण जाए। पौड़ी हर मंदर सोई आखिया, जिथों हर जाता मानस देह गुरबचनी पाया। सब आत्म राम पछाता, बाहर मूल ना खोजी है कर माहे विधाता। मन मुख हर मंदिर की सार ना जाननी, तिन्नी जन्म गवाता। सब मैं एक वर्तदा गुर शब्दी पाया जाई। वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। सलोक महला तीजा, मूर्ख होवे सो सुने मूर्ख का कहना। मूर्ख के क्या लखण है क्या मूर्ख का करना। मूर्ख ओहो जे मुग्ध है अहंकारे मरना। एतक माने सदा दुख दुखी मैं रहना। अत प्यारा पवै खूहे क्यों संयम करना। गुरमुख होए सो करे विचार ओस अलिप्तो रहना। हर नाम जपै

रोवै दे सर लंक गवाए, जिन सीता आंदी डौरू वाए। रोवै पांडव पए मजूर, जिनकै स्वामी रहत हदूर। रोवै जन्मे जा खोए गया, एकी कारण पापी पया। रोवै सेख मसा एक पीर, अंतकाल मत लागै पीड़। रोवै राजे कन पड़ाए, कर कर मांगै भिखिया जाए। रोवै किरपन संचै धन जाए, पंडित रोवै ज्ञान गवाए। बाली रोवै नाए पतार, नानक दुखिया सब संसार। मन्ने नाओ सोई जिन जाए, औरी कर्म ना लेखै लाए। महला दूजा, जप तप सब किश मन्ने है, अवरकारा सब बाद। नानक मन्या मन्नी बुझिए गुर प्रसाद। पौड़ी काया हंस तुर मेल, करतै लिख पाया। सब मैं गुप्त वरतदा, गुरमुख प्रगटाया। गुण गावै गुण उच्चरै, गुण माहे समाया। सच्ची बाणी सच है, सच मेल मिलाया। सब किश

व्यापिया दुर्मत कबुद कमूड़ा मन लागा तस्मोहा ठगै सेती ठगरा ले आया साथ पे इको जिहा। सतगुर सराफ नदरी वेख दो कड्डै ता उगड़े आया लोहा बहु तेरी थाई रलाए रलाए दिता उगड़िया पड़दा अगे आए खलोहा सतगुर की जे सरणी आवै फिर मनूरो कंचन होहा। सतगुर निर्वैर पुत्र सत्र समाने औगण कटे करे सुध देहा नानक जिस तुर मस्तक होवै लिखिया ते सतगुर नाल सुनेहा अमृत बाणी सतगुर पूरे की जिस कृपाल होवै तिस हृदय वसेहा आवन जाना तिसका कटी है सदा सदा सुख होहा पौड़ी जो तुद पाणा जंत सो तुद बुझई जो तुद पाणा जंत सो दर गै सिजई जिसनो तेरी नदर हम मैं तिस गई जिसनो तू संतुष्ट कल मल तिस खई जिसकै स्वामी वल निरपौ सो पई जिसनो तू कृपाल सच्चा सोथियई जिसनो तेरी मया ना पोहै अगनई तिसनो सदा दयाल जिन गुरते मत लई श्लोक महला पंजवा कर कृपा कृपाल आपे बख्श लै सदा

अष्टपदी साल का साम खुजल हो सा साम सभी साल का सामटे अभिमान साल का सापटे सो ज्ञान साल का साम जय प्रवनेरा सा साम सब होतन बेरा साल का साम पाए नाम रतन साल का संग एक ऊपर जतन साल की महिमा बरने कौन प्राणी नानक साल की शोभा प्रमाण सुमानी साल का संग गोचर में रहे साल का संग सदा पर फुल है साल का संग आवे बस पंचा साल संग अमृत रस पंचा साल संग सब की रे साल का संग मनोहर बहन साल का संग न कतु उतावे साल संग सिद्ध मन पावे साल का संग माया ते पे साल संग न प्रसो प्रसन्न।